0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: द फैक्ट दैट देयर इज नाउ सडनली अ रेजिंग डिबेट विद रिगार्ड टू इथेनॉल, व्हाई इज इट दैट इट्स हैपनिंग नाउ?
5: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
6: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
4: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
5: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
6: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
7: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: lost faith in the integrity of the examination system. I think the least the government could do is to replace the minister.
1: कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधियों का साथ दिया, कभी कम्युनिस्टों को, कभी टेररिस्टों को, कभी और कोई अलगाववादी शक्तियों को, आज भी वही कर रही है। इसलिए धीरे धीरे सिकुड़ रही है, जनता के सामने सब साफ है। यही लोग बार बार देश का ये जो विकास हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, इससे विदेशी लोग कुछ खुश नहीं है। तो उनके साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका भारत पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, किसी इंग्लैंड के खिलाफ स्वर मिलता है, वही लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको श्रीलंका, बांग्लादेश या भूटान, नेपाल बनाने का जो साजिश हो रही, वो भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान है।
2: They have been protesting for last many weeks. Our parties have been deeply involved with this protest, associated with the protest, and we are glad that the Congress party under Rahul Gandhi also joined the protest. So it's not new that the political parties are entering the fray. We have been part of this Jandra Mandra protest, and all our leaders have been associating with that. And now, since the main opposition party also has joined us, it's good. We welcome the move of the Congress party and Rahul Gandhi. Now, one thing is very clear. The message of the strike, agitation, protest is resonating across the country.
1: ये तो चर्चा करना ही नहीं चाहते, एक शब्द भी कोई खड़ा होके कहना चाहता है, हाउस बंद हो जाए।
3: खेड़ा है, आज विपक्ष के सांसदों ने काले कपड़ों में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार भी कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आज क्या मान रखेंगे आप?
4: इतने नौजवानों पर लाठियां बरसाने के बाद अब ये चर्चा करेंगे? इस्तीफा करवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, फिर आगे बात करिए।
3: तो आपको लगता है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे,
4: इस्तीफा देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी,
3: उसके बाद ही चर्चा के लिए कांग्रेस तैयार होगी?
4: आप देखते हैं अंदर क्या निर्णय है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही पड़ेगा।
5: काला दिन है देश के लोकतंत्र के लिए, कि देश के बच्चे पिट रहे हैं, देश की एक बच्ची राम मनोहर लोहिया में मौत और जिंदगी से जूझ रही है। किस तरह से आप मार रहे हो बच्चियों को, कैसे मार सकते हो ऐसे?
6: लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बच्चों को, जो युवाओं को भरमाया जा रहा है, उनके गलतफहमी पैदा की जा रही है, उनको राजनीति के इस्तेमाल पर
5: नहीं, नहीं गलतफहमी पैदा की जा रही है, बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। हम आप कह रहे हो गलतफहमी पैदा की जा रही है,
6: क्या मांग है आप?
5: अभी आप देखिए चल रहा है ना, इस्तीफा दें, आपने बच्चों पर लाठी चलाई, आपने बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए, किस बात के लिए भाई?
7: सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपी ब्लैक ड्रेस में आएंगे, काला दिवस मनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कल पुलिस को इस्तेमाल करके एमपीज के साथ बर्ताव किया, परसों जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया, जिस तरह से मनमानी सरकार कर रही है और जिस तरह से मिसबिहेव कर रही है पार्लियामेंटेरियंस के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके खिलाफ में आज एक काला दिवस मनाया जाएगा।
8: देखिए कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था, तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए।
9: एलओपी के द्वारा अभी तक की गई तमाम पश्चानी हरकतों की श्रृंखला, उन्होंने एक बार उन्होंने अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। ये जिम्मेदार नेता होने के बावजूद कानून उनको पता है, बिना अनुमति, बिना सूचना, बिना परमिशन के, बिना नोटिस के, देश की सबसे संवेदनशील स्थान माननीय प्रधानमंत्री के निवास के सामने धरना देकर जनसाधारण को बहुत दिक्कत दी। ये ऐसा जब एक पार्टी के शीर्ष नेता विनती करेंगे कि आम कार्यकर्ता कानून को रोज रखने लिया।
10: कल जो है अत्याचार हुआ, परसों छात्रों पे जो अत्याचार हुआ, उसके बाद जो लगातार अत्याचार पुलिस कर रही है, और नीट पेपर को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, सबको लेके आज काले कपड़े पहन के प्रदर्शन है।
11: देखिए राहुल गांधी का पास कोई इशू नहीं है, अभी एक इशू उनको लग रहा है मिल गया, लेकिन कांग्रेस कितना घोटाला किया, उसमें स्मरण राहुल गांधी।

0: हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी।
1: एंड So Sonam Wangchuk has been shifted to Medanta Hospital. It's a private hospital. The family wanted him to be shifted out from Safdarjung Hospital to Medanta Hospital. And Gitanjali Angmo, his wife, has said that she is happy with the Delhi High Court favorably disposing her appeal and adhering to his demand. Also, Cabinet Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh have met Sonam Wangchuk yesterday, and they have also given him assurance that the government is looking into his demands of improving the education sector. With that, it's time for a short break. More news and updates on the other side.

0: All right, we're getting some news coming in from India's top court. What we're being told is that a plea on the protests, on that the Supreme Court has refused an urgent hearing. And this was a plea challenging police action in the protests in the national capital. The Chief Justice of India has said, and I'm quoting the Chief Justice here, don't waste our time, don't waste your time. That's the latest that we have for you. Nupur will be decoding that for us. She joins me live from the national capital. Nupur, in what context was that comment by the Chief Justice of India made?
1: Vedika, the petition was, letter petition was mentioned by Advocate Narendra Mishra. He was seeking a suo motu intervention by the top court in the recent action by the Delhi police on protesting students. He said that he had collected links to the videos which show alleged brutality on the students and he wants to place them on record and wants Supreme Court to take a suo motu action on the same. However, the CGI in just one line responded that don't waste our time and yours. We don't want to watch any videos.
2: सर लास्ट टू थ्री
3: डेज बोलना चाहते हैं आप बोलना चाहते हैं
2: लास्ट सर
4: बैठो बैठो
2: वी द एंटायर नेशन इज पेनिंग नाउ द वे इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रूटली डील विद द स्टूडेंट्स हु आर एजिटेटिंग अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान सर सर वन पॉइंट मेरा पॉइंट है सर
3: आपको बताइए आप चर्चा चाहते हैं
2: ऑपोजिशन
3: सरकार चर्चा को तैयार है
2: सर
3: आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी आप जितना समय चाहोगे
2: बोलेंगे बोलेंगे हम
3: पूरी चर्चा में बोलेंगे
2: बोलेंगे सर हम चाहता है हम बोल सर हमारा डिमांड वेरी क्लियर है एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन
3: आप चर्चा में
2: इफ यू एक्सेप्ट अडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा करो सर
5: अध्यक्ष महोदय जी
2: अडजर्नमेंट मोशन
5: तीन दिनों से सरकार की ओर से हमने ऊपर किया हुए मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना आपने बात कहा है तो सुनिए ना सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए सरकार पूरी तरह से

0: more discussion. Clearly, Aishwarya, the ball now lies in the court of the opposition and the Speaker, who needs to now work out the details of this discussion. Will the opposition say yes to it? Will they agree is the big question for now.
1: The government is very clear and they have time and again stated that they're not running away from any sort of discussions. Government has stated that the minister on the floor of the house is also ready to give a statement on the NEET paper leak. But parliament runs with some rules and conventions. It is the rules that needs to be decided. Just not agreeing to a demand of opposition to initiate a debate will certainly give answers. It should be a formal discussion that should take place. And this is how parliament has been running for years. It is the Congress party who has been in power for so many decades in the country. They knew how the parliament functions. And the there are experienced politicians in the Congress party in the opposition bloc as well. So they need to understand that first in the business advisory committee.
0: Aishwarya, because the minister is speaking, we're going to cut across and listen in.
2: आज पार्लियामेंट सदन ने कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार. हमने पहले दिन से कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है. हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा. पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है. अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है. चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए. और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए. और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है. अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा. लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है. किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है. जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए. इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो हम ये चाहते हैं. इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि समय और नियम तय करें और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए. वी हैव फ्रॉम द डे वन informed our opposition leaders and also informed the Honorable Speaker and the Chairman of the Raj Sabha that the government is ready for discussion, but we have to decide under which rule and the date and the duration of the discussion. This has to be decided. We can't just put any important matter under discussion for just the sake of discussion.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
8: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
9: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
10: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
11: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा क्या स्वाद है।
12: अरे मेरे राजा,
14: सबका राजा आर प्योर मसाला।
15: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
7: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर
2: मसाला। माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: like no one else, only on NDTV Network.
1: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
2: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
3: Higher end, check the audio.
1: Let's do it.
4: Breaking story, we're jumping straight into it.
1: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
5: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
1: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
6: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
5: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
1: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
0: NDTV tops the Reuters Institute, India Reach Rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
7: Comfortable, pollution-free and highly affordable. They are redefining public transportation across the state.
8: पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है इस टाइम और एसी और चार्जिंग वगैरह सब चीज की सुविधा है सर इसमें
7: एट प्रेजेंट ई बसेस आर प्रोवाइडिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस उत्तर प्रदेश व्हिच विल सून बी एक्सपैंडेड अंडर द ग्रोस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल द स्टेट्स इलेक्ट्रिक बस फ्लीट इज सेट टू ग्रो रैपिडली फ्रॉम अराउंड 900 बसेस टू मोर देन 10,000 बसेस
9: जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिससे इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आग प्योर मसाला।
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: Let's just get to your top story, and that is in regard to the paper leak politics that continues inside the parliament. Through the day today, the government and the opposition locked horns over the Delhi protests. It's Defence Minister Rajnath Singh hitting out at the opposition. Well, according to him, he's saying that it is the opposition that's using the country's youth as a political tool. In a very strong statement, this is the defense minister there saying, Rajnath Singh said, that the opposition is misleading the youth and the students, and that it should debate on the issue inside the parliament and not take to the streets and not take it out on the streets. In the parliament, the opposition has been adamant on demanding the resignation of the education minister. It's Mallikarjun Kharge who said that it's only after the resignation of Dharmendra Pradhan is when they are ready to hold talks as far as a neat paper leak is concerned. He needs to resign first, and then the debate can take place only after. Akhilesh Yadav has also said that opposition wants the resignation of the education minister. He also questioned the silence of the prime minister on the matter and asked why is Prime Minister Modi not speaking on the matter. Then earlier this morning, we had the Congress leaders protesting inside the parliament. They were in fact wearing black outfits over the detention of the MPs during the dharna outside the president's, Prime Minister Modi's house that took place just yesterday. Today, in fact, it is the BJP also taking to the streets and speaking in the same language as the Congress party.
1: Delhi mein jari virodh pradarshan ye gambhir chinta ka vishay hai aur ye atyant durbhagyapurn hai ki hamare desh ke chhatron aur naujawanon ko kuch log apne rajneetik swarthon ki poorti ke liye ek rajneetik auzar ke roop mein istemal karne ka prayas kar rahe hain. Pradhanmantri Modi ji ke netritv mein hamari sarkar vidyarthiyon aur naujawanon ki aakankshaon ko पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सब की जिम्मेदारी है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भलीभांति समझते हैं और वे प्रगति विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे. मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं. हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी
2: आप चर्चा चाहते हैं. जब सरकार खुद ही कह रहे हैं चर्चा चाहते हैं, फिर इन्होंने अलग सा एक मुद्दा लेकर के और एक कंडीशन लगा करके चर्चा नहीं होने देने के लिए फिर सब बहाना लेके आया है. ऐसा नहीं करना चाहिए. लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर है और वो खुद मुझे मालूम है वो जैसे भी चर्चा होना है उन्होंने कहा है, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी फिर से अलग से कंडीशन लेके आया है. ये ठीक नहीं है. इसलिए आपने रिक्वेस्ट किया है चेयर फैसला करे और हम लोग चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है.
3: माननीय सेक्रेटरी जनरल मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल.
4: सर विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन 22nd जुलाई 2026 हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग मोशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन द कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 दैट दिस हाउस डू एक्सटेंड टाइम फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 till the last day of monsoon session 2026.

0: states to join medical colleges because the question papers are leaked in North India. So it suits BJP to have NEET. That is the problem with them.
1: And now we have new videos that have emerged of last night from the protests of the attack on security officials and RAF officers. In these videos, people are seen breaking barricades, assaulting officers, and also few people are seen with swords in hand. Meanwhile, Delhi police has launched a probe into the violence that took place on the 20th of July and the protests that took place at Jantar Mantar. So far, there are about 10 FIRs that have been registered against protesters for violating law and order in the national capital. According to the police, these FIRs have been registered in connection with various incidents that occurred during the protests and related to the law and order situation that was taken into the hands by the protesters.
2: Iski jo script hai, badi hi kisi ne sujonojit tarike se likhi thi aur ye student kam se jo बैड एलिमेंट्स और शरारती तत्व इसमें ज़्यादा थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान हमारे 120 आदमी जवान हमारे और 16 सीनियर अफसर घायल हुए हैं।
3: लोगों ने अटैक किया, वो क्या किसी पत्थर से, किन चीज़ों से अटैक किया गया? स्टोन पेल्टिंग जो हुई, क्या कोई वेपन भी इस्तेमाल किया गया इसमें?
2: वेपन का तो मेरी जानकारी में कोई नहीं है, लेकिन पत्थर का और बॉटल का और जो आस पड़ोस की बिल्डिंगें हैं उनकी टाइलें वाइलें वो करके वो मैंने उनको फेंकते हुए देखा है।
4: वो मेरे को स्टूडेंट्स किसी भी एंगल से लग नहीं रहे थे, सबके मुंह में गुटके थे, ठीक है जी, और मतलब अलग अलग तरीके की चेन्स पहन रखी थी उन्होंने। कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल ही, जब मेरे को रोड पे घसीटा गया तब लोग कह रहे थे इसे मुझे दे, मैं मारता हूँ, इसे जान से मार देंगे, इसे जान से मार देंगे, ये बातें सुन रहा था और मैं अपने मुँह को ढक के बस बैठ गया था। करीबन 50-60 लोग मेरे ऊपर आ गए थे और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी नहीं छोड़ रही थी सर, नाखून मारे हैं लड़कियों ने सर हमारी छाती पे, जबकि हम बोलते रहे कि हम लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, हम पीछे, आप प्लीज़ पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पर नहीं माने सर, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया।
5: वो लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनको बैरिकेड्स पर रोक रहे थे, तो एकदम भीड़ उग्र हो गई थी। उस उग्र भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, असामाजिक तत्व भी थे और स्टूडेंट टाइप के सारे चीज थे, तो उसी भीड़ में चोट लगी थी।
6: अच्छा, कहाँ चोट लगी आपको?
5: चोट मेरी एल्बो पे है, एकदम बहुत सारा पथराव हो गया था वहाँ पे, एकदम उस बैरिकेड पे इतना पथराव हो गया, बहुत ज़्यादा पथराव हो गया, उस पथराव में चोट लगी थी।
6: तो क्या जो लोग ये बैरिकेड तोड़ रहे थे वो क्या छात्र थे या कोई और थे, किस तरह के लोग वहाँ पर थे?
5: नहीं, उसमें सारे टाइप के थे, छात्र भी थे, छात्र तो शांति, उसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो एकदम उग्र हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही उग्र थे।
6: अच्छा, तो आपका ये हाथ कैसे, चोट कैसे लगी, क्या कुछ हुआ था?
5: हाथ में चोट एकदम पत्थर आए थे ऊपर से और डंडे थे वहाँ
6: उनसे,
5: हाँ, ये वही अंदर से, अंदर से ही थे जो उग्र भीड़ थी उसमें से ही।
7: उनको हम बार बार समझा रहे थे लेकिन वो समझाने न समझने के बावजूद वो उन्होंने कुछ, उनमें ऐसे तत्व रहे होंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से लिया और उन लोगों ने काफ़ी जो है गाड़ियाँ तोड़ी, बैरिकेड तोड़े, हम डंडों से पिटाई करी, पुलिस वालों की पिटाई करी, वर्दी फाड़ दी, तो स्टोन पेल्टिंग करी और कई सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, इस पर 115 के करीब अभी तक नॉलेज में आया, तो उसी दौरान मुझे भी चोट लगी।
1: Now it's actually Sonam Wangchuk who has been discharged from the Safdarjung hospital. This happened yesterday in the evening and he was taken to a private hospital, the Medanta hospital in Gurugram, for further treatment on the orders of the Supreme Court. As per the sources, it is JP Nadda and Jitendra Singh who visited him at the hospital in Gurugram, the Medanta hospital, to inquire about his health. And as per officials, the meeting lasted for an hour and the government assured Sonam Wangchuk that there are appropriate steps that the government is now taking to bring changes in the education reforms as far as the country is concerned. This comes about after the Delhi High Court ordered immediate shifting of Wangchuk, overturning its Sunday order, allowing the activist to be shifted to a hospital of his choice. And that is where, in fact, it is the government officials that met with the activists, in fact, demanding that he tell the protesters to, maintain peace and calm and to, act accordingly. And that is what was being asked by JP Nadda and others.
8: हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है और

0: कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तीन डिमांड्स हैं, वी आर 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर फ्यूचर प्रोटेक्टेड। थैंक यू।
1: थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई।
0: अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो तीन डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी है उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।
1: जीव चोपड़ा जी, माइक दो भाई।
2: राहुल जी, वी ऑल सीन व्हाट हैज हैपेंड विद द स्टूडेंट्स ऑन मंडे। We've also seen what has happened yesterday with the protesting MPs right outside the Prime Minister's residence. You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site. What would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition.
0: This, so to me, this how I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me five times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the cost that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it.
2: And the government's allegation on you?
0: I don't care about government's allegations. Government's allegations have no consequence to me.
1: Siddharth, ANI.
3: राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को, कि उससे ही निकल जाएगा, क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज़्यादा के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुँचे, उनके घर के बाहर पहुँचे हों। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहाँ जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए, उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है,
0: आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है?
3: मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन?
0: इसके दो कारण है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए।

चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा, देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरा पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
6: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
7: कुछ तो बात है इस तेल में।
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: He also questioned Prime Minister Modi's silence on the matter and asked, why can't Prime Minister Modi speak on the issue? Earlier this morning, Congress leaders protested in Parliament in black outfits over detention of its MPs during an unauthorized dharna, a sit-in outside Prime Minister Modi's residence yesterday.
1: मैं ये चाहता हूँ आप जो अपने स्पीच में कहे हैं कि 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए
2: इंडिया अलायंस गठबंधन है उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है गैर जिम्मेदाराना और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है संसद की मर्यादाओं को तार तार करके यह प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं
3: जर्मन मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं
2: सर जब ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ मांग किया है हम उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसको सुनना चाहिए आपने कुछ डिमांड किया है तो सुनेंगे नहीं इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते मैं उपसभापति महोदय मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखता हूँ कि पहले दिन से यह मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं अभी भी हम तैयार हैं हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया बाकी पार्टी के नेता को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते
4: हैं युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे और जो सरकार ने व्यवहार किया है इस्तीफा तो क्या है इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे सदन के बाहर ले लेंगे लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है उनके हाथ तोड़े सर तोड़ा उनके कपड़े फाड़े क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते नहीं जाते क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप
0: In Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, just a short while ago, he gave out his press briefing where he reiterated and asserted his demand for the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. He's also accused the government of destroying the education system. Take a listen to what all he said.
5: The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world is today a rigged system. The first demand, completely legitimate demand,
6: is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy.

0: कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की जरूरत नहीं थी।
1: So that's what happened in the parliament today and also what's happened outside the parliament. We'll get you more on the other side of this break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आके और मसाला।
11: We are over, जिमी।
12: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
13: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
15: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: get more news and updates on the other side.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में,
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आग और मसाला।
0: We are over, जिमी।
10: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
12: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
11: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सरसों
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
6: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: 2 days ago, the 20th of July, and today was supposed to be the second round of talks. JP Nadda was also present in the house today. He spoke to a couple of us, and he said that the government is completely open to holding dialogues with protesters. It wants to listen to what youngsters in this country are facing. It's open to finding solutions, but they've also denied. They've also said that the opposition is trying to build pressure on them, and that the government is not.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: peaceful students who just want an answer, they want a dialogue from their government. And then there are people who are taking advantage, who go and attack an RAF jawan. And let's play those visuals. Yes, students were beaten. Yes, students did face excessive force. And those people must be investigated. But an RAF jawan who ran on the streets today, who is critically injured, do you know his shield was snatched from him? He was beaten on the head with his shield. His helmet was pulled away. वो किसान का बच्चा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से नहीं है, वो किसी छोटे गांव से नहीं है।
1: पद्मजा जी,
0: you have to take sides of
1: nobody
0: every citizen of India.
1: Nobody has right to take law in. Nobody has right to take law in their hand. We have always supported a peaceful protest, and I am telling you with utmost responsibility that all the students were marching, they all were protesting peacefully. No student has resorted to unlawful mean. Yes, there may be some elements which have been sent by the Bharatiya Janata Party and their supporter to demean and defame this protest. The government, the official, there were police goons in civil uniform without name badges. What were they doing there?
0: Abbas Haider, you know, this is what that, you know, I support the right of every opposition party to seek answers from the government. But when you cannot, just hold on a second, sir. Just look at this picture on your screen right now. The picture on the left, you rightly say, students, innocents should not face excessive force. Any civilians should not be beaten, should not be attacked. A gentle touch should be used with them. They should be differentiated. But when you cannot reserve the same anger and outrage at a soldier simply because he is in the rapid action force, would you have not had a different stand if tomorrow you found out he's from Uttar Pradesh? Abbas Haider, you cannot have different standards of humanity. Just say both are wrong. That's it. That's all it takes. All right, I'm going to have to interrupt you because JP Nadda is on the stage right now. We will continue after listening to what he has to say. Okay, I think he is about to start. Let's just stay with these images. Let's go.
2: आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय नड्डा जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें।
3: मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ, भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज

पेपर लीक हुआ, वहां उस समय टीएमसी की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में पीएससी के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ, पीयूसी के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी, ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय यह नहीं है कि हम हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। यह गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको इसको इस पर इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है, और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है, और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसका इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हरेक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो, और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश की के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें, और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं आज मेरी तरफ से।

0: इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: एक मिनट, दो तीन सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय
0: वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी, उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने वो सारी बातें लिखी है, मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे।
1: नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछ, नीरज पांडे
0: आज कोई चर्चा नहीं है। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करेंगे।
1: जतिन ठक्कर, आपने शुरू किया था, आपने शुरू किया,
0: उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस।
1: चले
0: हम एक एक सवाल कीजिए। नहीं, इस तरीके से नहीं होते, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब देगी।
1: शर्मा जी पूछो लास्ट सवाल, आप जल्दी पूछो।
0: मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना, वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों
0: का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओके, दैट वाज यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा होल्डिंग अ लेट इवनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस सेइंग दैट द प्रोटेस्ट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, a little late in the day for asking for it not to be politicized, because that ship, as you know viewer, has sailed a long time ago. It has been 72 hours of a huge amount of political drama and protests on the streets of Delhi. Yesterday it was headlined by a leader of the opposition, Rahul Gandhi, taking center stage with his detention as well, following a big protest outside the Prime Minister's residence in the national capital. So you had JP Nadda there saying that Rahul Gandhi is trying to gain political mileage out of what is happening, and also listed some of the actions that have been taken by the government. So JP Nadda there putting the ball back in the opposition's court and saying there are paper leaks happening in opposition states as well, how come you don't demand action from those states? Let's continue with our show right now. Leave them kids alone is what our big focus is right now. The question we're asking, are netas of different political parties riding the anger and rage of students? And as these different entities make various different demands which appear to be negotiable suddenly, where does this leave the students whose anguish we are all worried about? The Delhi police, duty or excess? A big spotlight on the Delhi police over what they did on Monday. They've been accused of using excessive force. But when a petition was taken to the country's highest court today to hear it urgently, the Chief Justice of India says, don't waste our time. We don't want to see any such videos. Well, words matter at a time when sentiments are running high. So how have these words by the Chief Justice of India actually landed? I'm going to debate that here tonight. Let's begin with our top story tonight. Viewer tonight, Sonam Wangchuk is at one of the capital's biggest private hospitals being treated by a team of doctors. He put out a video just a short while ago as well, his first after he was shifted from a government hospital to a private hospital. The latest is the man who became the face of this movement for justice for students now appears set to call off his fast, but not before significantly diluting and softening some of the CJP's most uncompromising demands. Take a look at this. In a letter that he wrote today to the government, in fact, to JP Nadda, who you just saw, hours after meeting with those two ministers, Sonam Wangchuk's earlier demand for Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is no longer a firm call for him to go. It has now become a slightly watered-down version, a demand for the government to consider his resignation. Now, the Cockroach Janata Party's demand for 1 crore compensation for every family that lost a child in this examination mess has become a call for adequate compensation. Everything appears to have been watered down and diluted a little bit. Now, those are not subtle changes. They are major political concessions by the man helming an agitation that genuinely has this government sitting up and paying attention. But the dilution of those demands, the key demands, is only one part of it. Because at the same time, Rahul Gandhi, leader of the opposition, has his own list of demands and is continuing to evolve them, twist and turn them, handing the government an opportunity to accuse the opposition of confusion and opportunism. The result is a movement that increasingly looks fragmented. Different leaders, different demands, different messaging. And for a government that had been on the defensive, this apparent discord has all the makings of an off-ramp, an escape route. And that's the last thing that this agitation wants to make available. It strengthens the argument that this is less of a united student movement and more about competing political forces trying to claim ownership of it. And somewhere in all this, the students themselves are disappearing. When did you hear about students? You'll hear some of them on Instagram. You'll hear some of them on social media. But in all these protests, you're not hearing anything but the politicians and the netas. And they're all confused about their demands, as I've just shown you. The young people whose anger ignited this movement now have every reason to ask a very simple question. Who exactly is negotiating on their behalf? Who's conferring with them before dialing down the demands? And what today are those demands that they are actually fighting for? That is the key question that we are talking about right now.
3: Abhi bhi zinda hi hoon. Ye 25th din hai mere anshan ka. 25th din tak lagbhag mera 11 kilo wazan kam hua hai aur kafi maaspeshiyan kam hone lagi hain, magar ठीक ही हूँ. कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया. मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था. अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
5: देश का टायर जेके टायर।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आटे और मसाला।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
10: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
11: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
15: 1933। सरसों से
16: सरसों। What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind me,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? Silver के लिए sterling mark, gold के लिए hallmark
13: और mustard oil के लिए सिर्फ P mark.
14: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
2: P mark, the mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों.
3: कुछ तो बात है इस दिल में.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: We are over, जिमी।
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Launch control, 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ?

0: An ex-gratia of 4 lakh rupees for the families of those killed and 50,000 rupees for the injured. Prime Minister Modi has spoken to Chief Minister Prem Singh Tamang, further assuring full support from the centre, and also announced an additional ex-gratia of 2 lakh rupees from the next of kin of each deceased worker. The state government has also ordered a high-level probe into the suspected methane gas blast that led to the collapse, even as efforts remain focused on locating and rescuing the 5 workers still trapped inside the tunnel.
1: देखिए यह कोऑर्डिनेशन अच्छा था बोल के फटाफट जो है यह काम हो रहा है, रेस्क्यू का काम भी हो रहा है. दुर्भाग्य की बात यह है कि मीथेन गैस का इतना ये है कि थोड़ा ये हो रहा है और अभी फिर
2: चैलेंजिंग
1: थोड़ा डिकेट है, चैलेंजिंग है. अभी एनडीआरएफ का फिर नया टीम आए हैं, वो अभी गए हैं, वो सब व्यवस्था अभी तक जो है बंगाल के लगभग 5 जो है आइडेंटिफाई हुआ है डेड बॉडीज के, या बंगाल के हैं, और 6 और भीतर होने की आशंकाएं हैं. तो अभी परिवारों वालों से बात हो रहा है,
2: आइडेंटिफाई बात कर रहे थे, क्या बताया उन्होंने आपको?
1: एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उनका, तो वही परिवार सब बोल रहे हैं कि अभी उनको नहीं मिला है. तो अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ के प्रशासन से अभी यहाँ लगे हुए हैं, तो यह जल्द ही ये सब.
2: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग से साहब से बात किए हैं, और आपको यहाँ भेजा गया है, एक मंत्री आके बैठे हैं, तो ज़रूर सी बात है, एफर्ट्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है इस वक्त?
1: देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद इस विषय को माने संज्ञान में लिए हैं, खुद देख रहे हैं और पूरे रिपोर्ट ले रहे हैं.
3: मेरा बड़ा भैया अभी तक मिला नहीं है, वो अंदर पड़ा हुआ है.
2: उनका नाम क्या है?
3: गोरे उरा.
2: अच्छा, और आप वहाँ कहाँ से हैं?
3: मैं रहने वाला हूँ बंगाल का मादारी हाट का.
2: ठीक है, वो यहाँ पे अंदर काम कर रहे थे?
3: हाँ, अंदर मजदूरी काम करता था, वो अंदर काम करके बस ये हालत में अभी तक मिला ही नहीं.
2: कौन अंदर फंसे हुए हैं, कब से फंसे?
4: मामा.
2: क्या नाम है उनका?
4: जगेश्वर ठाकुर.
2: अच्छा, क्या करते थे वो अंदर, मतलब किस किस?
4: एक्सावेटर ऑपरेटर.
2: ऑपरेटर
4: एक्सावेटर.
2: कितने लोग होने की संभावना है अंदर?
5: संभावना अभी तो इससे 20 से 25 आदमी है उसमें, जिसमें से कितने निकल गए वो तो खैर इंडिया
2: 12 निकल गए
5: जी.
2: बॉडी इसको आइडेंटिफाई
5: ऐसे ही 12-13 और रह गया है.
6: 12-13 आइडेंटिफाई कर लिया.
2: ठीक है,
6: बाहर आया. बाकी जो 7 बॉडी है अभी तो रेस्क्यू टीम किया उद्धार करने के लिए.
2: अभी पानी निकलना मुश्किल अब होगा? अभी भी
5: पानी निकल जाएगा. अभी पानी निकलने के लिए कोई दिक्कत, पाइपलाइन टोटल ओके है, पहले से ही ओके है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं. डिवाइडिंग उसमें होता रहता है, बड़े बड़े मोटर लगा हुआ है.
2: सिर्फ पावर रिस्टोर होने से पानी
5: जी, पानी स्टोरेज के लिए भी केबल बिछा दिया है लोग, सारा काम हो गया है, खाली उसको कनेक्शन करना था. कनेक्शन करने के लिए भी आदमी गया, अभी चालू भी हो गया होगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा.
2: नाम और परिचय?
5: मैं सत्तन शाह, मैं बिहार से हूँ.
2: सत्तन शाह
5: जी,
2: बिहार से. अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं?
5: जी, फिटर से काम करते हैं.
2: आपका परिचय में या कोई है जो अंदर फंसे हुए हैं, आप जानते हैं?
5: इससे तो फंसे हुए एक्सेवेटर वाले हैं, बिहार के ही हैं.
0: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
9: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
10: Really?
9: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
11: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause. I reflect. I dig.

0: Our top focus, Paper League politics continues in the parliament through the day today. The government and the opposition locked horns over the Delhi protests. Union Minister J.P. Nadda asserted that the centre is ready for a discussion on the issue of NEET paper leak and also questioned Leader of Opposition Rahul Gandhi for being selective. He said that the government will give all answers. This after LOP in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi asserted his demand for the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. He's now accused the government of destroying the education system, and Rahul Gandhi in that very elaborative press briefing also said that the education system is completely rigged. Take a listen to the reactions, not just from J.P. Nadda, but also Rahul Gandhi, as the politics over paper leak peaks.
1: The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system.
2: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है. आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है.
1: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड. इफ यू डू द मैथ, सो वन मंथ 7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions.
2: Agar main baat karun Jammu Kashmir mein, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की. उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है. उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है. तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ, और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI

0: Chief Minister Prem Singh Tamang further assuring full support from the centre and also announced an additional ex gratia of 2 lakh rupees from the next of kin of each deceased worker. The state government has also ordered a high-level probe into the suspected methane gas blast that led to the collapse, even as efforts remain focused on locating and rescuing the 5 workers still trapped inside the tunnel.
1: देखिए यह कोऑर्डिनेशन अच्छा था बोल के फटाफट जो है यह काम हो रहा है, रेस्क्यू का काम भी हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीथेन गैस का इतना ये है कि थोड़ा ये हो रहा है और अभी फिर
2: चैलेंजिंग
1: थोड़ा डिकेट है, चैलेंजिंग है। अभी एनडीआरएफ का फिर नया टीम आए हैं, वो अभी गए हैं, वो सब व्यवस्था अभी तक जो है बंगाल के लगभग 5 जो है आइडेंटिफाई हुआ है डेड बॉडीज़ की, या बंगाल के हैं और 6 और भीतर होने की आशंकाएं हैं। तो अभी परिवारों वालों से बात हो रहा है,
2: आइडेंटिफाई बात कर रहे थे, क्या बताया
1: जी
2: आपको?
1: एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उनका, तो वही परिवार सब बोल रहे हैं कि अभी उनको नहीं मिला है। तो अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ के प्रशासन से अभी यहाँ लगे हुए हैं, तो या जल्द ही ये सब।
2: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग से साहब से बात किए हैं और आपको यहाँ भेजा गया है, एक मंत्री आके बैठे हैं, तो ज़रूर सी बात है एफर्ट्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है इस वक्त?
1: देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद इस विषय को माने संज्ञान में लिए हैं, खुद देख रहे हैं और पूरे रिपोर्ट ले रहे हैं।
3: मेरा बड़ा भैया अभी तक मिला नहीं है, वो अंदर पड़ा हुआ है।
2: उनका नाम क्या है?
3: गोरे उरा।
2: अच्छा, और आप वहाँ कहाँ से हैं?
3: मैं रहने वाला हूँ बंगाल का मादारी हाट का।
2: वो यहाँ पे अंदर काम कर रहे थे?
3: हाँ, अंदर मजदूरी काम करता था, वो अंदर काम करके बस ये हालत में अभी तक मिला ही नहीं।
2: कौन अंदर फंसे हुए हैं, कब से फंसे?
4: मामा।
2: क्या नाम है उनका?
4: जगेश्वर ठाकुर।
2: अच्छा, क्या करते थे वो अंदर, मतलब किस किस?
4: एक्सावेटर ऑपरेटर।
2: ऑपरेटर
4: एक्सावेटर।
2: कितने लोग होने की संभावना है अंदर?
5: संभावना अभी तो इससे 20 से 25 आदमी है उसमें, जिसमें से कितने निकल गए वो तो खैर इंडिया
2: 12 निकल गए
5: जी,
2: बॉडीज कुछ आइडेंटिफाई,
5: तो ऐसे ही 12-13 और रह गया है।
6: 12-13 आइडेंटिफाई कर लिया,
2: ठीक है,
6: बाहर आया। बाकी जो 7 बॉडी है अभी तो इसको टीम किया उद्धार करने के लिए।
2: अभी पानी निकलना मुश्किल अब होगा? अभी भी
5: पानी निकल जाएगा, अभी पानी निकलने के लिए कोई दिक्कत, पाइपलाइन टोटल ओके है, पहले से ही ओके है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडिंग उसमें होता रहता है, बड़े बड़े मोटर लगा हुआ है,
2: सिर्फ पावर रिस्टोर होने से पानी
5: निकल जी। पानी स्टोरेज के लिए भी केबल बिछा दिया है लोग, सारा काम हो गया है, खाली उसको कनेक्शन करना था, कनेक्शन करने के लिए भी आदमी गया, अभी चालू भी हो गया होगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा।
2: नाम और परिचय?
5: मैं सत्तन शाह, मैं बिहार से हूँ।
2: सत्तन शाह
5: जी,
2: बिहार से। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं?
5: जी, फिटर से काम करते
2: हैं। आपका परिचय में या कोई है जो अंदर फंसे हुए हैं, आप जानते हैं?
5: इससे तो फंसे हुए एक्सेवेटर वाले हैं, बिहार के ही हैं।
0: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that today?
0: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
11: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two.
12: It has been 72 hours of a huge amount of political drama and protests on the streets of Delhi. Yesterday, it was headlined by a leader of the opposition, Rahul Gandhi, taking center stage with his detention as well, following a big protest outside the Prime Minister's residence in the national capital. So you had JP Nadda there saying that Rahul Gandhi is trying to gain political mileage out of what is happening, and also listed some of the actions that have been taken recently

0: इंपॉर्टेंट दैट दिस प्रोटेस्ट टेक्स प्लेस. हर्ष सेइंग इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कॉन्वर्सेशन बढ़ेगा नहीं, इससे समाधान नहीं होगा.
1: समाधान होगा बट अगर नीट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे तो.
0: ओके,
1: नीट के प्रोटेस्ट,
0: दैट इज व्हाई द बोथ ऑफ यू आर हियर टुनाइट.
1: नीट के प्रोटेस्ट ने सर, नीट के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था लेकिन सुना नहीं गया था.
0: Okay.
1: मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई. और इन आतंकवादियों को परमिशन एक दिन में मिलती है, क्यों? इन आतंकवादियों को परमिशन आप रातों रात देते हैं, रात भर बैठ सकते वहां, और हमें 4 बजे लाठी मार के भगाया गया था. मुझे ध्यान है वो दिन 2024 में हम प्रोटेस्ट करने गए थे और मुझे लाठी मार के बाहर निकाल दिया जाता था 4 बजे. जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है कोई तो कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है. मैं शर्ट फाड़ के दिखा सकता हूं कि मैंने फटी को नहीं पहनी हुई है, लेकिन मैं यहां आया हूं, मैं अपनी इज्जत बचाना जानता हूं सर.
0: Okay,
1: लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है सर. आप सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता, कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है. मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं. चार साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है, कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता.
0: हर्ष बैठो, ये
1: गरीबों को रिजर्वेशन दिया
0: जाए. सारे जो पॉइंट्स हैं,
1: रिजर्वेशन कहाँ कहाँ होता है सर, आप सुनिए. रिजर्वेशन आप समझ रहे सिर्फ कास्ट सिस्टम है, रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है. एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही एमपी का बच्चा 540 पे पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 पे पाता है. क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार एमपी में सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्तों ने स्टेटर लगाया जनरल कैटेगरी से आके. आप कहां कहां पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं. ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है, क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है.
0: तो
1: इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है. कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है, जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे.
0: Okay.
1: नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है,
0: तो आपका,
1: क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है.
0: हर्ष, आपका कहना बेसिकली है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल जो इश्यूज है
1: वो
0: है ही
1: नहीं,
0: डिमांड नहीं हो रहे, वो
1: पता किसको है, वहां प्रोटेस्ट में बैठा कौन है?
0: ठीक है, ओके, सिट डाउन, लेट्स हियर हुमा.
1: हमारे पास अमेरिका जाने का वीजा बनवाने का पैसा नहीं है.
0: हुमा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट हर्ष इज सेइंग? He is also angry like you. He says, where are the issues? He says, it is not like this is not a real issue, but he says, there are many issues and nobody is talking about the core issues. Huma.
2: Sir, I can actually understand his frustration. He's very frustrated. I can very well understand that. But to respond to Harsh, first let us focus on something which has happened recently. Let us keep ourselves a bit restricted towards one thing. The one thing is that we want the accountability. No, you are right that accountability, taking accountability, you know, and the resignation of Mr. Dharmendra Pradhan, everything, every resignation. Let me complete, Harsh. Let me say. I'm getting.
0: We have
2: to
0: time.
2: You.
0: Don't worry. I'll come back to you.
2: Yes. Everything, anything that they do, anything which is going to happen or any positive thing which is going to happen cannot bring the students which died back to life. They cannot make that you know, reverse. Nothing can be reversed. But what we are wanting is, if Dharmendra Pradhan, if our education minister resigns, if he resigns, then at least, there'll be a little bit of fear in a person which comes on his post. The another person which comes on his post, at least he will have fear in his mind ki if something like this happens again, then, you know, this might take a massive, massive outrage in the people's mind. And, the things are not going to be normal again. I understand the reservation thing, everything. I know I myself have scored 520 marks, 510 marks. I have scored that. I know I'm from
0: but
2: Delhi.
0: But we are talking only
2: I
0: about
2: am not
0: NEET.
2: Able to.
0: We are only talking yeah. about NEET and paper leaks.
2: Yeah, I'm telling my NEET marks only, sir. But I have not been able to get a college in Delhi, in Haryana. Why? Because of cutoff. Because of high cutoff, because of reservation. I am from a general category. I understand that very well. I understand the frustration. I understand the pressure. I understand everything. But as of now, let's restrict to a particular thing. This, you know, we can say bad words about the government. We can fight with them. You know, we can use harsh statements against them. But,
0: yeah,
2: you know,
0: but this is, yeah, but this, I just want to say, ye debate.
2: This will make things more worse. This will make things more worse.
0: Stay on the issue.

0: Our top focus, Paper Leak Politics continues in the Parliament through the day today. The government and the opposition locked horns over the Delhi protests. Union Minister J.P. Nadda asserted that the Senate is ready for a discussion on the issue of NEET paper leak, and also questioned Leader of Opposition Rahul Gandhi for being selective. He said that the government will give all answers. This after LOP in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi asserted his demand for the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. He's now accused the government of destroying the education system, and Rahul Gandhi in that very elaborative press briefing also said that the education system is completely rigged. Take a listen to the reactions, not just from J.P. Nadda, but also Rahul Gandhi, as the politics over paper leak peaks.
1: The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system.
2: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है. आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है.
1: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड. इफ यू डू द मैथ, सो वन मंथ 7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions.
2: Agar main baat karun Jammu Kashmir mein, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की. उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है. उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है. तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ, और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है. उसी तरीके से केरला में, स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं. कर्नाटक में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ. तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी. ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो.
3: अखिलेश सर, ये जो टकराव है संसद में, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज तीसरा दिन है, काम नहीं हो पा रहा, क्या बीच का रास्ता?
4: सरकार खुद ये महसूस करती होगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आज भी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े. उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ. अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं. लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने का की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पा रहे. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है. तो जो उसके साथ खिलवाड़ किए, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया.
3: तो आपका मान,
4: सरकार
3: आपकी मान
4: ने खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था. तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है।
3: अब आपकी मांग क्या है, क्या
4: मांग ये है, जो छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा।
3: और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए,
4: वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोस देखे, तस्वीरें देखी, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने, तो पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी, ये ट्रेनिंग किस बात की है, पुलिस का कपड़ा फाड़ रही है।
5: बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला, जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया, ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
6: देखिए कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए, और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे, और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पर कल बैठ कर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए।
7: We have been protesting for last many weeks. Our parties have been deeply involved with this protest, associated with the protest, and we are glad that the Congress party under Rahul Gandhi also joined the protest. So it's not new that the political parties are entering the fray. We have been part of this Jandra Mandra protest, and all our leaders have been associating with that. And now, since the main opposition party also has joined us, it's good. We welcome the move of the Congress party and Rahul Gandhi. Now, one thing is very clear. The message of the strike, agitation, protest is resonating across the country.
0: Earlier, NDTV's political editor Vasudha Venugopal spoke with Congress MP on the showdown in Parliament over neat discussion.
8: The crux of this ongoing deadlock between the opposition MPs and the Treasury benches in the Parliament is the protest that took place on the 20th of July, and also the protest that was initiated by Congress MP Rahul Gandhi outside the Prime Minister's residence. Both of them reiterating one point, the resignation of Dharmendra Pradhan, the Education Minister of India. The larger context is, of course, educational reforms in the country. To talk about all of this, we have with us senior Congress MP, former minister, Dr. Shashi Tharoor. Dr. Tharoor, thank you so much for your time. My first question to you, sir, let me ask you straight away the political flashpoint. You know, BJP feels that Congress is weaponizing the aspirations of students. It's riding the momentum of some other protest. And Rahul Gandhi has a certain, element of anarchy, in him when he protests like this. And that should have been completely avoided.
9: Oh, first of all, this is an absurd charge, because the BJP were the past masters when they were in opposition of weaponizing other people's movements, like the Anna Hazare movement, which the BJP weaponized to ride this horse of corruption into the government in 2014. So naturally, political parties in the opposition will always use whatever the national sentiment is in their favor. And if that national sentiment can be whipped up to support themselves, they will do so, number one. Number two, I think you should understand, Vasudha, that the Congress party started its own Chhatron Ki Goonj many months before the Jantar Mantar protest started. I mean, the students across the country have been expressing their deep frustration and unhappiness over the repeated leaks of exam papers by the NTA. The NEET exam was the last straw. It was not the first such example of a paper leak. And when the students were so agitated, quite naturally, the Congress party said, this is an issue we must take up. And Congress-leaning students started, through our student wing, the Chhatron Ki Goonj, which is going on from city to city, having student protests. Now, I'm not saying that there's any monopoly. Anybody can have a protest on any issue that matters to them. And other parties were welcome to either join us or do their own. And when the

0: कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: Our top focus, Paper League politics continues in the parliament through the day today. The government and the opposition locked horns over the Delhi protests. Union Minister J.P. Nadda asserted that the Senate is ready for a discussion on the issue of NEET paper leak, and also questioned Leader of Opposition Rahul Gandhi for being selective. He said that the government will give all answers. This after LOP in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi asserted his demand for the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. He's now accused the government of destroying the education system, and Rahul Gandhi in that very elaborative press briefing also said that the education system is completely rigged. Take a listen to the reactions, not just from J.P. Nadda, but also Rahul Gandhi, as the politics over paper leak peaks.
1: The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system.
2: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? ये स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है. आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है.
1: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड. इफ यू डू द मैथ, सो वन अ मंथ 7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions.
2: Agar main baat karun Jammu Kashmir mein सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की. उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है. उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है. तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ, और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है. उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं. कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ. तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी. ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो.
3: अखिलेश सर, ये जो टकराव है संसद में, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज तीसरा दिन है, काम नहीं हो पा रहा, क्या बीच का रास्ता?
4: सरकार खुद ये महसूस करती होगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आज भी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं. उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ. अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं. लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने का की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पाए. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है. तो जो उसके साथ खिलवाड़ किए, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया.
3: तो आपका बात,
4: सरकार
3: आपकी बात
4: ने खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था. तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है।
3: अब आपकी मांग क्या है? क्या
4: मांग ये है, जो छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा।
3: और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए।
4: वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं जो लाठी खा करके आए हैं, उनको

0: Moving on, the death toll in the Sikkim tunnel collapse has now risen to 21, with rescue teams continuing a desperate operation to reach five workers who remain trapped inside the under-construction NHPC Teesta Stage 6 hydropower tunnel in Namchi district. According to officials, 25 workers were inside the tunnel when a suspected methane gas explosion triggered the collapse on Monday afternoon. 12 bodies have now been recovered so far, while 7 victims have been identified. Rescue teams from the NDRF, SDRF, Army, NHPC and a specialized mining rescue unit from West Bengal are working round the clock despite extremely difficult conditions. The Sikkim government has announced an ex gratia of 4 lakh rupees for the families of those killed and 50,000 rupees for the injured. Prime Minister Modi has spoken to Chief Minister Prem Singh Tamang, further assuring full support from the centre, and also announced an additional ex gratia of 2 lakh rupees from the next of kin of each deceased worker. The state government has also ordered a high-level probe into the suspected methane gas blast that led to the collapse, even as efforts remain focused on locating and rescuing the 5 workers still trapped inside the tunnel.
1: देखिए यह कोऑर्डिनेशन अच्छा था बोल के फटाफट जो है यह काम हो रहा है, रेस्क्यू का काम भी हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीथेन गैस का इतना ये है कि थोड़ा ये हो रहा है और अभी फिर
2: चैलेंजिंग
1: थोड़ा डिकेट है, चैलेंजिंग है। अभी एनडीआरएफ का फिर नया टीम आए हैं, वो अभी गए हैं, वो सब व्यवस्था अभी तक जो है बंगाल के लगभग 5 जो है आइडेंटिफाई हुआ है डेड बॉडीज़ की, या बंगाल के हैं, और 6 और भीतर होने की आशंकाएं हैं। तो अभी परिवारों वालों से बात हो रहा है,
2: आइडेंटिफाई बात कर रहे थे, क्या बताया
1: जी आपको? एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उनका, तो वही परिवार सब बोल रहे हैं कि अभी उनको नहीं मिला है। तो अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ के प्रशासन से अभी यहाँ लगे हुए हैं, तो यह जल्द ही ये सब।
2: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग से साहब से बात किए हैं और आपको यहाँ भेजा गया है, एक मंत्री आके बैठे हैं, तो ज़रूर सी बात है, एफर्ट्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है इस वक्त?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री खूब इस विषय को माने संज्ञान में लिए हैं, खूब देख रहे हैं और पूरे रिपोर्ट ले रहे हैं।
3: मेरा बड़ा भैया अभी तक मिला नहीं है, वो अंदर पड़ा हुआ है।
2: उनका नाम क्या है?
3: गोरे उरा।
2: अच्छा, और आप?

0: ऐसा ही 12-13 और रह गया है।
1: 12-13 आइडेंटिफाई कर लिया,
2: ठीक है,
1: बाहर आया। बाकी जो 7 बॉडी है अभी तो रेस्क्यू टीम गया उद्धार करने के लिए।
2: अभी पानी निकलना मुश्किल होगा? अभी भी
0: पानी निकल जाएगा, अभी पानी निकलने के लिए कोई दिक्कत, पाइपलाइन टोटल ओके है, पहले से ही ओके है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडिंग उसमें होता रहता है, बड़े बड़े मोटर लगा हुआ है,
2: सिर्फ पावर रिस्टोर होने से पानी
0: जी। पानी स्टोरेज के लिए भी केबल बिछा दिया है लोग, सारा काम हो गया है, खाली उसको कनेक्शन करना था। कनेक्शन करने के लिए भी आदमी गया, अभी चालू भी हो गया होगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा।
2: नाम और परिचय?
0: मैं सत्तन शाह, मैं बिहार से हूँ।
2: सत्तन शाह
0: जी,
2: बिहार से। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं?
0: जी, फिटर से काम करते
2: हैं। आपका परिचय में या कोई है जो अंदर फंसे हुए हैं, आप जानते
0: हैं? इससे तो फंसे हुए एक्सेवेटर वाले हैं, बिहार के ही हैं।
3: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं, व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव, आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड। इफ यू डू द मैथ, सो वन मंथ 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज अफेक्टेड बाय दिस। These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions.
0: अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तेलंगाना में वहाँ पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ, और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है। उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी, ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो।
2: अखिलेश सर, ये जो टकराव है संसद में, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज तीसरा दिन है, काम नहीं हो पा रहा, क्या बीच का रास्ता?
3: सरकार खुद ये महसूस करती होगी ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आज भी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ेंगे। उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ। अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने का की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पाए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है, तो जो उसके साथ खिलवाड़ किए, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया।
2: तो आपका बात,
3: सरकार
2: आपकी बात
3: ने खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था। तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है।
2: अब आपकी मांग क्या है? क्या
3: मांग ये है? छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा।
2: और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए।
3: वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने, पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी, ये ट्रेनिंग किस बात की है, पुलिस का कपड़ा फाड़ रही है।
4: बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में, इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से, तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला, जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
5: कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स

0: से है?
1: मैं रहने वाला हूँ बंगाल का मादारी हाट का।
0: ठीक है, वो यहाँ पे अंदर काम कर रहे थे?
1: हाँ, अंदर मजदूरी काम करता था, वो अंदर काम करके बस ये हालत में अभी तक मिला ही नहीं।
0: कौन अंदर फंसे हुए हैं, कब से फंसे?

0: बाहर आया, बाकी जो सात बॉडी है अभी तो रेस्क्यू टीम गया उद्धार करने के लिए।
1: अभी पानी निकलना मुश्किल अब होगा? अभी भी
2: पानी निकल जाएगा, अभी पानी निकलने के लिए कोई दिक्कत, पाइपलाइन टोटल ओके है, पहले से ही ओके है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडिंग उसमें होता रहता है, बड़े बड़े मोटर लगा हुआ है,
1: सिर्फ पावर रिस्टोर होने से पानी
2: निकल जी। पानी स्टोरेज के लिए भी केबल बिछा दिया है लोग, सारा काम हो गया है, खाली उसको कनेक्शन करना था, कनेक्शन करने के लिए भी आदमी गया, अभी चालू भी हो गया होगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं आएगा।
1: नाम और परिचय?
2: मैं सत्तन शाह, मैं बिहार से हूँ।
1: सत्तन शाह
2: जी,
1: बिहार से। अच्छा, आप यहाँ पे काम करते हैं?
2: जी, फिटर से काम करते
1: हैं। आपका परिचय में या कोई है जो अंदर फंसे हुए हैं आप
2: जानते हैं? इससे तो फंसे हुए एक्सेवेटर वाले हैं, बिहार के ही हैं।
3: On that note, we slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: Our top focus, Paper League politics continues in the parliament through the day today. The government and the opposition locked horns over the Delhi protests. Union Minister J.P. Nadda asserted that the Senate is ready for a discussion on the issue of NEET paper leak, and also questioned Leader of Opposition Rahul Gandhi for being selective. He said that the government will give all answers. This after LOP in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi asserted his demand for the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. He's now accused the government of destroying the education system, and Rahul Gandhi in that very elaborative press briefing also said that the education system is completely rigged. Take a listen to the reactions, not just from J.P. Nadda, but also Rahul Gandhi, as the politics over paper leak peaks.
1: The thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system.
2: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है. आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है.
1: 152 पेपर लीक्स हैव टेकन प्लेस ओवर द लास्ट डेकेड. इफ यू डू द मैथ, सो वन अ मंथ 7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. And then they're literally spat on. And the best part of this is zero convictions.
2: अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की. उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहाँ कांग्रेस की सरकार है. उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है. तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ, और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है. उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं. कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ. तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी. ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है, जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो.
3: अखिलेश सर, ये जो टकराव है संसद में, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज तीसरा दिन है, काम नहीं हो पा रहा, क्या बीच का रास्ता?
4: सरकार खुद ये महसूस करती होगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आज भी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े. उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ. अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं. लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने का की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पा रहे. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है. तो जो उसके साथ खिलवाड़ किए, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया.
3: तो आपका मान,
4: सरकार
3: मान
4: ने खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई, इसका मतलब पेपर लीक हुआ था.
5: तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है।
3: अब आपकी मांग क्या है? क्या
5: मांग ये है, छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा।
3: और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए।
5: वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने, पुलिस कपड़ा क्यों फाड़ने लगी, ये ट्रेनिंग किस बात की है, पुलिस का कपड़ा फाड़ रही है।
6: बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला, जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
7: देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए, और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से

0: Arm and trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
1: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
3: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: From the newsroom, to the studio, to the thick of political action.
8: You're watching NDTV 24/7.
9: The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues.
10: With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing.
9: Remember, this is also...
11: Moving on, the death toll in the Sikkim tunnel collapse has now risen to 21, with rescue teams continuing a desperate operation to reach five workers who remain trapped inside the under-construction NHPC Teesta Stage 6 hydropower tunnel in Namchi district. According to officials, 25 workers were inside the tunnel when a suspected methane gas explosion triggered the collapse on Monday afternoon. 12 bodies have now been recovered so far, while 7 victims have been identified. Rescue teams from the NDRF, SDRF, Army, NHPC and a specialised mining rescue unit from West Bengal are working round the clock despite extremely difficult conditions. The Sikkim government has announced an ex gratia of 4 lakh rupees for the families of those killed and 50,000 rupees for the injured. Prime Minister Modi has spoken to Chief Minister Prem Singh Tamang, further assuring full support from the centre, and also announced an additional ex gratia of 2 lakh rupees from the next of kin of each deceased worker. The state government has also ordered a high-level probe into the suspected methane gas blast that led to the collapse, even as efforts remain focused on locating and rescuing the 5 workers still trapped inside the tunnel.
12: देखिए यह कोऑर्डिनेशन अच्छा था बोल के फटाफट जो है यह काम हो रहा है, रेस्क्यू का काम भी हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीथेन गैस का इतना ये है कि थोड़ा ये हो रहा है और अभी फिर
13: चैलेंजिंग
12: थोड़ा डिकेट है, चैलेंजिंग है। अभी एनडीआरएफ का फिर नया टीम आए हैं, वो अभी गए हैं, वो सब व्यवस्था अभी तक जो है बंगाल के लगभग 5 जो है आइडेंटिफाई हुआ है डेड बॉडीज़ के, या बंगाल के हैं, और 6 और भीतर होने की आशंकाएं हैं। तो अभी परिवारों वालों से बात हो रहा है,
13: आइडेंटिफाई बात कर रहे थे, क्या बताया उन्होंने आपको?
12: एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है उनका, तो वही परिवार सब बोल रहे हैं कि अभी उनको नहीं मिला है। तो अभी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ के प्रशासन से अभी यहाँ लगे हुए हैं, तो या जल्द ही ये सब।
13: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग से साहब से बात किए हैं और आपको यहाँ भेजा गया है, एक मंत्री आके बैठे हैं, तो ज़रूर सी बात है, एफर्ट्स में क्या क्या प्रायोरिटीज़ है इस वक्त?
12: देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद ही इस विषय को माने संज्ञान में लिए हैं, खुद देख रहे हैं और पूरे रिपोर्ट ले रहे हैं।
14: मेरा बड़ा भैया अभी तक मिला नहीं है, वो अंदर पड़ा हुआ है।
13: उनका नाम क्या है?
14: गोरे उरा।
13: अच्छा, और आप वहाँ कहाँ से हैं?
14: मैं रहने वाला हूँ बंगाल का मादारीहाट का।
13: ठीक है, वो यहाँ पे अंदर काम कर रहे थे?
14: हाँ, अंदर मजदूरी काम करता था, वो अंदर काम करके बस ये हालत में अभी तक मिला ही नहीं।
13: कौन अंदर फंसे हुए हैं, कब से फंसे?
15: मामा।
13: क्या नाम है उनका?
15: जगेश ठाकुर।
13: अच्छा, क्या करते थे वो अंदर, मतलब किस किस?
15: एक्सावेटर ऑपरेटर।
13: ऑपरेटर
15: एक्सावेटर।
13: कितने लोग होने की संभावना है अंदर?
15: संभावना अभी तो इससे